फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है, नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं, मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है, और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का, 1950 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंहापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ऐसा ठुमक के मत चलो कि आम को ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।

और नजर बचा कर चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है हमारे जनता। और हम चलते हैं, मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। 1952 में एक सुपरहिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं दोस्तों।

नाइटिंगेल अता जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मौफी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फाउन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

समझी मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों, अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली, अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तले और दोस्तों तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या। पद्मश्री मोहम्मद रफीका नीघ दिद्रिय सस्टकाये जो है।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना, झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

झूठ बोलोगे तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मैं मुकेश का गया हुआ जोंग है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल्ड, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

वहां की रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर, और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद, 1962 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

का हैप्पी स्टेशन 500 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात करते, कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारे प्यारे।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरी जुहन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने निस्ताई रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जब दो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज़ आते हैं, एक दूसरा आवाज़ भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

ख्वाहिशें क्या ख्वाहिश है, हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है, क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है।

ये होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तू आईना, कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 905-2824 तार का नंबर है। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। हो माजी चल, हो माजी चल, फिल्म आया सावन झुमके का सॉन्ग है। निघन तिंग निघन शस्त्र में जो फिल्म रिलीज हुआ, आशा परेख एंड धर्मेंद्रा दोनों फिल्म में काम किया।

आज ही चल के बाद निकिती फिरन शस्त्र का एक फिल्म का एक सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ। उन दिनों में दोस्तों अगर आपको पैसा नहीं है पिंडा बांगी स्टालर्स पर तैर लोश का कार्ता खरीदने के तो आप फिल्म नहीं देख सकते थे। इन दिनों में तो दूसरा रकम है, मैंने लोग तो है टेलीफोन पे फिल्म देख लेते हैं, लेकिन उन दिनों के बाद है जब फिल्म देखना बहुत मुमकिन नहीं था, आसान भी नहीं था, पैसा होना चाहिए था दोस्तों। और

पेश हुआ 1964 में फिल्म आई मिलन की बेला। जब भी फिल्म बनता था तो प्रोड्यूसर जो था वो ढूंढता था एक कलाकार को, रेंद्र कुमार का होफरल था लेकिन एक दूसरा कलाकार, एक बड़ा एक्टर को खोजता था कि वो जाकर इस फिल्म में काम करे क्योंकि फिल्म धूमधाम से टॉप पे आवे। तो किसी ने नहीं नाम दिया, किसी ने नहीं फैसला किया इस फिल्म में काम करने को। तो राजेंद्र कुमार खुद धर्मेंद्र के पास गया और धर्मेंद्र से बातचीत किया, चलो मेरे फिल्म में काम करो। तो धर्मेंद्र मान गया, इस फिल्म में काम किया दोस्तों। लेकिन फिल्म के बाद क्या हुआ, इस सॉन्ग के बाद मैं आपको बताऊंगा।

राजेंद्र कुमार सैरा बानू के साथ और धर्मेंद्र शशिकला के साथ, और धर्मेंद्र ने इस फिल्म में नहीं खाती फ्रॉल अदा किया, राजेंद्र कुमार का तो होफ रोल था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म रिलीज होने के बाद हर एक लोग फिल्म को देखा, धर्मेंद्र को और पसंद किया राजेंद्र कुमार से ज़्यादा। राजेंद्र कुमार को जब इस बात से मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा में आया और वो कहा कि अब मैं धर्मेंद्र के साथ फिल्म नहीं बनाऊँगा। लेकिन पैसा पैसा पैसा, जहाँ काम मिलता है वहाँ काम करना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद एक दूसरा फिल्म फिर ये दोनों ने बनाया, ये दोनों मिल के इस फिल्म में काम किया। अभी सॉन्ग के बाद फिल्म आए मिलन का बेलका, एक दूसरा सॉन्ग के बाद आपसे मैं बताऊँगा। तुम कमसिन हो नादा हो, सुख हो, होली भी हो,

0: फिल्म आई मिलन का की बेला का सॉन्ग अभी आपने सुना। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरा फिल्म जिसमें फिर एक बार राजेंद्र कुमार का होफड़ोल था और बैरल था ना धर्मेंद्र का। फिर भी फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र का और पसंद किया और इस राजेंद्र कुमार इस बात से खुश नहीं था। उसी फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूंगा। गीत सुनने के बाद आपको जरूर पता लग जाएगा किस फिल्म का बात मैं करता हूँ। माला सिन्हा भी इस फिल्म में काम किया, राजेंद्र कुमार, कुमकुम, नसीर हुसैन और बहुत से लोग।
1: तो देख लो।

0: जरा जाते जाते
1: फिल्म ललकार दोस्तों, जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र साथ काम किया और फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र को और पसंद किया, क्या बात है दोस्तों। उन दिनों में धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर नहीं था, लेकिन राजेंद्र कुमार एक जुबिलियम स्टार था दोस्तों। फिर भी धर्मेंद्र को लोग बहुत पसंद किया इन दोनों फिल्मों में। एक दूसरा फिल्म का कहानी और है, पहले सॉन्ग चलेगा।
2: गीत गाता हूँ मैं,
1: एक्टर के बात होगा।

विनोद मेहरा ने अपन दिल के बात पियानो के साथ कहा है दोस्तों, और बगल में राजकुमार एक सिगारा पी रहा है। प्यार मोहब्बत की कहानी इस फिल्म में, और फिर भी विनोद मेहरा इस फिल्म में काम किया। विनोद मेहरा के बारे में एक दो बात होगा, एक दो लाइन चलेगा। मुंबई पहली टेक में इनका घर है और पैदा हुआ है निखिल फैम फिर तक अमृतसर पंजाब में, और पहला काम किया है छोटा सा रोल, छोटा अभी उतना उम्र के नहीं, मैं सोचता हूँ 15-16 साल के था, तो एक रोल अदा किया ये फिल्म रागिनी में। और विनोद मेहरा ने 4 बार शादी किया दोस्तों। पहले सॉन्ग चलेगा, उसके बाद हम आपसे बताऊँगा किस किस एक्ट्रेस के साथ विनोद मेहरा शादी रचाए।

विनोद मेहरा। विनोद मेहरा चार बार फिर केरेस दिशा मान खतरों, पहला बार मीना द्रोगा से शादी किया, दूसरा बार बिंदिया गोस्वामी से शादी हुए, तीसरा बार जीपी दत्ता और चौथा बार रेखा मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ शादी किया। जब विनोद मेहरा रेखा को घर पर ले गया शादी के बाद, तो विनोद के माँ ने ये रिश्ता नहीं स्वीकार किया और रेखा को रेखा के साथ बुरा बात करने लगा, और इसी कारण रेखा ने विनोद को छोड़कर विनोद से रिश्ता तोड़ दिया और चला गया विनोद के घर से। जी हाँ दोस्तों, चार बार ये आदमी शादी किया है। एक दूसरा सॉन्ग भी चलेगा विनोद खन्ना का, फिल्म घर का, निहरी अख्तन सी फिल्म तक में जो रिलीज हुआ।

किया जाए ना, तुम क्या होता है, तुम कौन हो? जहाँ देखा सामने नजर आते हो तुम, जहाँ देखा सामने नजर आती हो तुम, प्यार के परछाइयों में हमेशा याद आती हो तुम, मेरे ख्वाबों के दुनिया में रहती हो तुम, मेरे पास आके मुस्कुराती हो तुम, मोहब्बत की राहों में आके तड़पाते हो तुम, प्यार हमें देकर फिर दूर चले जाते हो तुम, कौन हो तुम? धर्मेंद्रा। दोस्तों, धर्मेंद्रा एक मर्द जो प्यार करने के लिए, जब प्यार का समय आया दोस्तों, तो वो झगड़ा किया, अपने बच्चों के आँख में आंसू भी देखा, शादी करने के लिए अपना धर्म बदला वगैरह वगैरह, सिर्फ अपन प्यार पाने के लिए। दोस्तों, वो सोचा था कि ये जंग उन्हें अपने प्यार के बाहों में परछाई की तरह बांध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सॉन्ग चलेगा, उसके बाद मैं बातचीत करूँगा। धर्मेंद्रा, आप जानते हैं, हेमा मालिनी से भी वो शादी किया।

शर्मिंदा का प्यार जो हेमा मालिनी से था ये गलत निकला। जी हाँ दोस्तों, ये बात गलत हुआ। आज जब धर्मेंद्रा को सबसे ज़्यादा सहारा की ज़रूरत है तो वो नहीं है, हेमा मालिनी नहीं है। साथ देती है उनका पहली बीबी, उनका धर्म पत्नी, जिनसे पहली बार शादी किया प्रकाश कौर ने। और धर्मेंद्रा का उम्र तो इस वक्त 90 साल से उच्च और ज़्यादा है दोस्तों। और हेल एनास्थेक्सिक, आप जानते हैं जब उनका समय था, धर्मेंद्रा का समय था, जब वो मैदान में खड़ा हो जा रहा था तो एक पहलवान के तरह, और जब गुस्सा जाता था बात करते थे तो लोग दर्द आते थे, वही धर्मेंद्रा दोस्तों। आप जानते हैं उम्र के साथ सब कारोबार चलता है, जो उम्र कम है तो आप अभी बचपन में हैं, और जब उम्र बढ़ता जा रहा है तब जवानी आ जाते हैं, उनके बाद बुढ़ापा छा लेता है। फिर भी ऐसी तो जिंदगी है। एक दूसरा फिल्म राजा जानी, जिसे धर्मेंद्र अपन स्वीट हार्ट हेमा मालिनी के साथ काम किया, उस फिल्म का शौक

हो राजा जानी, हाय नीली आंख वाली, है नीली आंख वाली तेरे मतवाली चाल, तेरी गुलाब जैसी होठ, लाखों में एक तू ही तो हो, लाखों में एक तू ही पे तो हो, जिस पर हम है बेहोश।

हाय हाय, तूने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? मैंने सोचता हूँ कि ये काम हर एक ने किया होगा। प्यार तो हर एक करता है, प्यार बांटता चलो। जो तुझे प्यार है तो उन्हें बांटना चाहिए। और अगर आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आँख से शुरुआत होता है और जाकर दिल में समा जाता है। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हो साथी चल।

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो रिस

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

क्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतू कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

is mee Safar Saye te onhe. Van harte welkom en een fijne vakantie toegewenst. Ye aisa desh hai jahan sundarta jo dekhne ke liye duniya se har ek prant se log yahan aate hain. सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहाँ कुंस एंड कल्चर के लिए लोग यहाँ तक आते हैं, पर यहाँ देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जगहें हैं. और ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में भी मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार और कौन कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है, हालांकि अलग अलग शहरों में, पर फिर भी रोटरडम, डेन हाग, अलमेर, आरनहेम, आम्स्टरडम, फ्लारनिंगर, क्रिम्पन ऑन द एसल, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें. अगर मंदिर का दर्शन करना है, भगवान को दर्शन करना है, तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है. देखा जाए कि डेन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है, जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को, डेन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है. इसी तरह से सूतमेर में मंगलवार को 6 बजे से 8:30 तक रात्रि का कार्यक्रम, और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है. इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं, तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे, तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बैत में है, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को. रोटरडम में भी राम मंदिर, इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है. सुनो लो, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे.

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नई हतीन ससन सईफ अंतख में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

तो ये हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

गलत हूँ, वह राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाओ।

जी के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ती मेहुल के आवाज में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनवाना सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। और ये कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. Sriman Khemraj ji ne ye sandesh ko bheje, een schrijver, filosoof, जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महा मंत्र कहा गया है।

हम इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करें तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

ये सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमाई।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में

0: अस्त्र है, एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फा और हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर से न्यू सीफ तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग मैं पेश करूंगा दोस्तों। 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुन

और है नया एहसास है आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल के आवाज़ों में, मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा दोस्तों, ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा, तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो को शेयर कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। 0 से 5 फिर से 5 2 2 फिर से 4 पर आपको तार करना है।

ये लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना। फाह हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

चाहे झूठा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार। फिल्म दोन का सॉन्ग है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसरी कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोरदार से चला दोस्तों। उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

तो मोर कहनिया हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

जोंग है दोस्तों। तो हम चलते हैं यानी कि तो एंड यानी कि हम चलते हैं बैठक गाना सुजल उमराव भैया उसके ओर हम चलते हैं और वो क्या सुनाते हैं आओ सुना जाए।

और क्यों खफा है तू हमसे, लगा है तुमसे एन बैठकाना जोंग दान किने वो दित नोइट नोइट फॉर बैल लात खान फान शिरली गिर्ली।

यो आई वांट यू कौन ची मांगे भैया को दीना मांगे द बैठक गाना टाइगर धरविंदर सिंह जीवनाथ के बाद तो हम चलते हैं और अपना भुजनिया सॉन्ग भुजनिया के पतोहिया ना बात करे हैं और वो है प्रदीप गोपी का गाया हुआ ये सॉन्ग आओ मिलकर सुना जाए एंड अमेजिंग स्विंगर स्विंगर

और दोस्तों कोठड़िया की और इस गीत को गाया है रजेश शिवनंदन के बाद हम जाते हैं एक बार फिर और वो है सुजल उमराव की ओर।

बधौआ लेकर आओ। और ये बधौआ कौन लेकर आते हैं? वो आते हैं प्रदीप गोपी, आपको सुनाए हैं। तो दोस्तों,

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानि खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानि पिता, दो बहुए पतो यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो तुस्मिदक्स औद हाक वेख 28 दिन हाक शहर में, और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 यूर मस्जिद यानि मस्के जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानि हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ तुई न्यू एकन दोइनन कंपफुल इस्तरात के कब्रिस्तान में तजीर व तफीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानि खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानि पिता, दो बहुए यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सत सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में नया जमाना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख 28 दिन हाक में, और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानि मस्के जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानि हलफीन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ तुई न्यू एकन दैन कंपरफुल इस्तरात में कब्रिस्तान में तजीद व तफीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-73-61 और एक तार और है 06-41-25-88-93। मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-73-61 और 06-41-25-88-93। फाओ हूँ हिंदुस्तानी सभी परिवार लाम राम लखन और रिश्तेदार अब्दुल को यहाँ से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और मातम में शरीक है। सुनने वालों से निवेदन है और गुजारिश है कि ये खबर तक और आगे तक पहुँचा देने को। यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर रिश्तेदार अब्दुल का।

जब मुअज्जिन की अजानों से हो रहमत का नुज़ूल, बरसे तुर्बत पे मेरी गुलशन फिरदौस के फूल, रोज इस तर चमकता रहे तुर्बत का नसीब, रोज इस तर हाँ रोज इस तर चमकता

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। फुल हॉट वन।

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंगड़ी की और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

0: mixed by DJ Tonmoy.
1: एंड दोस्तों आज हम रिमिक्स के मोड में हैं और जरा गेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमिक्स ही रिमिक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोंग की ओर, आओ सुना जाए ये क्या है।

और तुनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा सॉन्ग है, रीमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हमारे झुमाते हैं, नचाते हैं, और सुना जाए।

En beste luisteraar, Aantje Remix के मोड में है और जो रिमिक्स के मोड में है तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने सारी दुनिया तेरे लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं, आज रिमिक्स के मूड में हम हैं और रिमिक्स के मूड में हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं, और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे, और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉट वन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

0: Mahali D. DJ Saran dot in.
1: हम किसी दूसरे की अमानत है, हम किसी दूसरे की अमानत है।
2: नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, और किसी की नहीं हो सकती, और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया,
3: हाँ, और समझो हम दोनों की प्यार के बीच में कोई आया तो वो समझो कि वो मर गया है।

और जीना दुश्वार हो गया है। तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं। तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के ओर हम जाते, तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को, अगले गानों को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीना तमन, जीना तमन ने काम किया है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हम दोस्तों दम मारो दम अभी आप सुने थे दम मारो दम और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो हो हो शंबा हो हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान और हम मिल के इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जहां रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपिलहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपिलहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है, पपिलहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपिलहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जय दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए है, रेड पुश हो या ब्लैक पुश हो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तू बल्ले बल्ले, दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोल तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपके सुनाते हैं बोल तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ, और हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सो रहे थे, चलो हम चलते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। दिन तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कोलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जहाँ दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन्स का फिल्म है मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

कह दिल कि आजा तुझे प्यार करे, फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया, अलका यज्ञिक के साथ में सुनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

और सनम, फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे, तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

ने दी बेकरारी ए मेरे सनम, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

सुनाई प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली बार मोहब्बत की है, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे आप सुनेंगे। चलिए ये सॉन्ग हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिरपाओ की आवाज़ में साइड चेक रसी का दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

उसमें मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी, और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रोठो सनम।

चार दिन की ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में। अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा, वादिका रामसुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और वादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशअप भी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, दविंदर सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

अनिल रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जॉयस शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

0: Hey, info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Het station, de music section Fahon, Kim Madinse.

0: सुंदर पोपो सुंदर पोपो
1: जियारा लहर लोट हो जाए
0: जादू भरी आवाज कलाकार अपने अपने जगह
1: गुड़िया मारो ना
0: वाह रे वाह।

ये कलाकार फ्रॉम त्रिदत हैं तो बेगो दोस्तों वही के निवासी और अपने आवाज में सात संगीत जो है हमारी यही हम लेकर आए हैं अपनी भारत भूमि से।

द ग्रेट, खास करके ये आवाज जो है आप सुने मोती माला और भोला सिंह के कमाल।

समस्त फलक मेलोडी है न, कभी ये पुराण नहीं होते हैं। कैसा आपको लग रहा है, मैं उन दिनों में बचपन में सुना और आज सुना हूँ, तो उसी तरह से और आज के संगीत में ये जाकर मिलती है जुलते हैं ना, क्या बात है। आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप अवश्य ज़रूर कह सकते हो, अगर कुछ आप चाहो जो कहने के लिए।

हमारे दोस्तों, पता नहीं लोग मुझसे नाराज क्यों होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि मुझे मनाना नहीं आता है। हमारी साथियों, एक वक्त था कि सारा दिन बात करते थे, और एक वक्त है बात करने की तरसते हैं। तो किसे मैं गुजारिश करूं ये बात, आप ही बताओ। प्यार मोहब्बत जो होता है फिर कभी नहीं हो सकती। मोहब्बत मुझे, हाँ, फिर कभी नहीं हो सकती मोहब्बत मुझे। वो शख्स भी एक ही था, ये दिल भी एक ही है, तो कैसे होगा, बतलाइए। ये हो ही नहीं सकता ना।

खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और रब जो है भगवान खुदा, और रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। हमारी साथियों,

किसी को बतलाना ही पड़ेगा ये बात जो है। मत रख के इतनी नफरतें अपने दिल में आए इंसान, हाँ मत रख इतनी नफरतें अपने दिल में आए इंसान। जिस दिल में नफरत होती है ना, उस दिल में रब नहीं और रहते। क्या बात है, क्या कहना है आपको, यूं ही कह सकते हो, कह डालो।

अरे वाह कलाकारों, संगीत, यकीन मानो हमारी जो है यकीन आप चाहे तो करो ना, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले भगवान जो है, जैसे भी आप चाहो कह दो, जो नाम से आप पुकारना चाहो पुकारो, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। इसके बारे में आपको क्या कहना है, यूं ही हमेशा और अपने विचार रख सकते हो, क्योंकि तार को नंबर नौ सोई फतेह तक जो है हमारी साथियों।

मशहूर कलाकार अपनी अपनी जगह हर एक कोई जो है कहता हूँ, और माँ के जो याद करता हूँ, कितना भी लिखूँ उसके लिए कम है। एक माँ पवित्र शब्द अपने जुबान पे जो मैं लेता हूँ, तो माँ जो है कितना भी लिखूँ उसके लिए कम है। सच ये है कि माँ ये शब्द हमारी साथियों तो है तो हम है कहना

जब मैं माँ के बात कर रहा हूँ ये शब्द, तो हमारे साथियों माँ की कमी जो है, माँ ये नाम फिर से एक बार, ये पवित्र नाम जो है पाक है ना, कहते हैं लोग, कहते हैं कि किसी एक की चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से, लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरा नहीं और जाकर हो सकती है हमारी साथियों।

अभी वही माँ के आसपास हम घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं दोस्तों, उसी के भी पास है ना, क्योंकि माँ के सबक जो है उसे सीखा हूँ, जाना हूँ और यही आपको भी बतलाता हूँ कि माँ जो है ये पवित्र शब्द है। मुझे दिल तोड़ना नहीं आता क्योंकि मैंने प्यार करना अपनी माँ से सीखा हूँ। हमारी साथियों

परिवार के रिश्ता में जो होता है माँ से बड़ा कोई हमदर्द नहीं और बाप से बड़ा कोई हम सफर नहीं।

या हमारी जब हम माँ इसके बात कुछ कर रहे हैं, माँ की आवाज़ और माँ के शब्द, वो सब जो है माँ के बारे में कहता हूँ, तो यही सोच रहा हूँ कि माँ जो होता है ना, क्या है माँ? उनके कदमों में जन्नत है, लोग कहते हैं स्वर्ग, वहीं पे तो और सुकून एहसास मिलता है हम सबको। मुश्किल रास्तों में भी आसान सफ़र लगता है, मुश्किल रास्तों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आपको क्या लगता है बतलाइए।

तो इसीलिए मैं आपसे कहता चलूं, ये बात जो है ना, क्या बात है ये हमारे साथियों, मिलने बिछड़ने का गम नहीं होना चाहिए। जिंदगी यही आना जाना लगा रहता है, और जो है क्या कहूँ मैं, तो यही सुनाना है आपको ना। और हमारी यानी जी डंकुअल, हमारी इरन जी भैया, खास करके आप लोग के समस्त परिवार को यही कहना है।

0: और ये प्रोग्राम है हमारी साथियों, उदास मत हुआ करो बेवजह लोगों के कदर ना करने पर, बस सब्र रखो, सब्र रखो वक्त उसे आपकी कदर एक ना एक दिन सिखा देगा। हमारी प्रिय सज्जनों, फाहुन की सुनने वालों, साथियों,
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल, न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है दिल।

प्यार जो हम आपस में करते हैं ना दोस्तों, इसमें से जो है दिलो जान से यही सोचते हुए कि एक दूसरे की एहसास हो जाएगा, समझ जाएगा, हो जाता है, समझ में आ जाता है। फिर भी चलते चलते क्यों ये मतभेद कभी कभी हो जाते हैं ना, ये जिंदगी है, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यारो हमारे साथियों, यहाँ तारीफ भी होगी और जलील भी किया जाएगा, ये जानते रहना। एनवीज फोर ब्राइट है

ये सब कुछ शब्दों से नहीं, यूं ही एहसास भी दिलाना पड़ता है। हमारे साथियों, और एक बात अगर आपसे बोल सकता हूँ, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला बैठा बुरा नहीं लगता और आंखों से आंसू भी नहीं गिरते हैं। ऐसा वक्त जिंदगी में आ जाता है कभी कभी ना, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो ठीक अच्छा, और कोई बात ना करे तो भी ठीक वो भी अच्छा। और हमारी बेस्ट में से हमारी प्रिय और सज्जनों,

से निकाला हुआ गीत है, एक्ट किए हैं मीना कुमार जी, पक्की साथ नई कंटीन तुम्हें इनसे ही फिर तक की बातचीत हो रहा है।

हाँ यही बात है, अपने बारे में जरा से कुछ कह दूं। हाँ, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूं राही जी। हाँ सुदैव ने, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूं, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूं, एक जिंदगी होना चाहता हूं बिना रिश्ते और रिवाजों का, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूं मैं आज, मैं होना चाहता हूं साथियों, मैं आज मैं होना चाहता हूं। बताइए क्या बात है भैया। चांद रघुनाथ जी धर्मपत्नी शीश प्रोग्राम सुनते हो।

आप ही की स्टेशन जनता के पास वाहन हिंदुस्तानी रेडियो है 24 घंटे लगातार इसे आप सुन सकते हो कोई भी काम काज के लिए तो यहीं पर आप दरियाफ कर सकते हो मरीजाद को नंबर 9 अभी तक मैं आपका सेवक शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ

0: पवन कर शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन कर शोर।
1: हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर।
2: लक्ष्मी केंद्र प्यारे लाल।

आशा भोसले और साथ में बादशाहों के बादशाह सातों सुरों के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहेब

मेरे साथियों, आप कार्यक्रम सुन रहे हो कैसा है यूं ही जानना भी चाहता हूँ कभी कभी ना। वैसे तो ऐसा बात तो नहीं कि अकेले बैठ के मैं खुद अपना अपने लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, चला रहा हूँ और खुद अकेले सुनता हूँ कार्यक्रम हर एक सुनने वालों को। और अपनी तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके रिएक्शन जो है और आज का दिन, ये पल, ये घड़ी हमारे साथ जो बिता रहे हो, संगीत और मनोरंजन जो चाहते हम अंश पानेंगे, हर एक कोई चाहता है यही जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्तों। और जिंदगी जीते चले उसमें और क्या मेहरबान हम दे सकते हैं। आप ही से बतलाता चलूँ कि हम जो जीते हैं प्यार मोहब्बत में, आपस में मिलकर देते हुए एक दूजे के, एक दूजे कौन, एक दूजे जिसे कोई रिश्ता है या तो ये और इस सृष्टि में, संसार में, और एक नई ब्योरखर है इस दुनिया के, उसके साथ मिलकर हंसी खुशी से वो बांटते चले और वो जो आप देंगे वही मिलेगा। मत भूलना, जो देना है तो देव और वही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा, कर्म इसे कहते हैं हमारी साथियों।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वादा धड़बड़ घिर ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मैं राही भटकने वाला हूँ क्या जाने मटवाला हूँ, माइटी मुकेश के आवाज में।

मेरा ही भटकने वाला हो, कोई क्या जाने मतवाला हो। भाईटी मुकेश की आवाज़ में भी ये गीत को सुने थे। आइटम जारी है दोस्तों, यह प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है और अब की बार फिल्म चेहल तीफ का एक गीत है, रुला के गया सपना मेरा, नाइटिंगेल लता की आवाज़ में।

हंसी एक नखमे, हंसी के नखमे गाते रहो, हंसी के नखमे गाते रहो, वक्त निकाल कर, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो। क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, जब तुम मेरा साथ न दे सको।

खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

आरंभ होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र के प्रोग्राम में आज शाम को मैं रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। रणबीर कपूर, पिता का नाम ऋषि कपूर और माता का नाम नीटू सिंह कपूर, पैदा हुआ 28 सितंबर 1988 तक मुंबई इंडिया में, शादी किया आलिया भट्ट के साथ यार तुई जैसे तुई में। रणबीर कपूर के घर पर हमेशा प्रॉब्लम झगड़ा होते रहते हैं पिता माता से, तो इसलिए रणबीर कपूर पिता से बहुत दूर रहता था, पिता से बहुत कम संबंध था रणबीर कपूर से। लेकिन बात यह हुआ कि रणबीर कपूर पिता के साथ असिस्टेंट फिल्म आ अब लौट चले में काम किया, उसके बाद ये दोनों का प्यार फिर मिल गया और बाप बेटा दोनों फिर प्यार से जीते थे। रणबीर कपूर फिल्म शौर्या में असिस्टेंट का काम किया, और असिस्टेंट का काम किया बनिया लीला के साथ असिस्टेंट का काम किया। उसके बाद पहला फिल्म तुई जैसन सीफ में फिल्म शौर्या में आया। तुईसन दैरथिंग का फिल्म ये जवानी है दीवानी, ये इंडिया बॉलीवुड का एक फिल्म था जो सबसे ज़्यादा नफा अंदर लाया, सबसे ज़्यादा पैसा अंदर लाया। रणबीर कपूर का एक फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म बर्फी जो भी एक हिट फिल्म निकला उसी फिल्म का सॉन्ग आप सुनेंगे।

रणबीर कपूर। रणबीर का कपूर का कहना हुआ कि उसका फिल्म जो ट्यूरिज्म दैरतिक में बना, ये जवानी है दीवानी, ये सबसे बड़ा फिल्म जो आतिल को बनाया इस फिल्म है। उसके बाद फिल्म रंजीता, वो भी एक बड़ा हिट फिल्म था जिसमें बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, जैसे कि अजय देवगन, नाना पाटेकर, अर्जुन रामफल और कतरीना कैफ। रणबीर कपूर दोस्तों एक कपूर परिवार, कपूर का फिल्म दुनिया का बड़ा परिवार कपूर का एक लाइन्स हूँ जैसे हम कहते हैं। तो ऋषि कपूर फिल्म एक्टर था पिता, माता भी फिल्म एक्ट्रेस था। अब रणबीर कपूर इंडिया बॉलीवुड का एक टॉप एक्टर है। बात यह है दोस्तों कि संजय दत्त एक फेस था, एक त्यौहार था, एक पार्टी था, तो वहाँ पर रणबीर कपूर बैठा था और संजय दत्त आया अंदर। फिर रणबीर कपूर को कहा कि आपका चाल स्वभाव जैसे लगता है तो आप एक्टर का कामिल नहीं हो, एक मानल का रोल, एक मर्द का रोल आप नहीं अच्छी तरह से अदा कर रहते हैं और नहीं कर पाएंगे। तो रणबीर कपूर को इस बात से गुस्सा हुआ दोस्तों, और हमेशा जब रणबीर कपूर को प्रॉब्लम होते थे तो पिता के पास जाते थे ऋषि कपूर के पास, तो ऋषि कपूर ने जाकर बातचीत किया संजय दत्त से और वहाँ से फिर आपस में लोग मिल गया। लेकिन एक दूसरा बात और है, एक पार्टी, एक क्लब में पार्टी था और वहाँ पर सलमान खान बैठा हुआ था और रणबीर कपूर अभी फिल्म में काम नहीं करते थे, लेकिन पिता एक पॉपुलर एक्टर था तो इसलिए रणबीर कपूर जहाँ जाते थे तो वहाँ बड़े बनकर बैठे थे और बड़ा बड़ा बात करते थे। तो बात क्या हुआ दोस्तों, रणबीर कपूर और सलमान खान दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सलमान खान रणबीर कपूर को एक लपर एक झापड़ मारा दोस्तों। तो रणबीर कपूर तुरंत घर पर गया, पिता से कहा कि देखो इसी से बात हुआ। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के साथ तुरंत गया सलमान खान के घर पर और सलमान खान से कहा आपने क्या किया। सलमान खान ने कहा भाई ऋषि जी, मैं नहीं जानते थे कि आपका बेटा है। तुरंत पकड़ कर रणबीर कपूर को गले लगाया और कहा कि आप मेरा बेटा हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए कि बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो फिल्म एक्टर का परिवार होते हैं तो जहाँ जाते हैं तो अपन हड़ताल करते थे, और वैसे भी संजय दत्त का चाल स्वभाव जो है तो आप जानते हैं किस तरह से। एक सॉन्ग हम सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार, रणबीर कपूर का फिल्म।

रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का रिलासी या प्यार मोहब्बत था दीपिका के साथ, उसके बाद कतरीना कैफ के साथ 6 साल तक लोग ये दोनों साथ थे और बड़े बड़े फिल्मों जैसे ने जो काम किया, जैसे कि फिल्म रॉकस्टार, बर्फी, रंजीता, ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म सवारिया, फिल्म कहानी, फिल्म रॉकस्टार, फिल्म बर्फी और फिल्म संजू में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रणबीर कपूर का बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल दोस्तों, और ये आन फूडर है ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब का। और वैसे तो रणबीर कपूर दोनासी स्कैंकिंग देता है मिली और कहानी शास्त्री को, बहुत से स्कैंकिंग देता है। रणबीर कपूर मुंबई में रहता है अपन बीबी आलिया भट्ट के साथ दोस्तों। और यहाँ तक था रणबीर कपूर का छोटी सी कहानी।

0: सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। फाह और निस्ता रेडियो पर आप चुने ड्रीम गर्ल, ये सभी ड्रीम गर्ल के लिए
1: दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप और हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है दोस्तों, और मिस्टर सानू, टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू ने खजी सीफ ने तख तक में शुरुआत किया है गीत गाने को, और ये लगभग 1000 से ज़्यादा गाना ये गाया है, और इसका एक न्यू सॉन्ग है यार तुई जैसे फिर तक में ये सॉन्ग गाया है, और लगभग ये गीत 1 महीना पुराना है। तो एक डुएट है कुमार सानू और साथ साथ सर भरीस दोनों के साथ, ये गीत दोनों के आवाज़ों में, दोनों की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे, मिस्टर सानू एंड सर भरीस।

तुम्हें तुम्हें देते एक और रोमांटिक हॉट सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ, मिस्टर सानू और साधना सरगम दोनों के आवाज में आप सुनेंगे। कुमार सानू दोस्तों एक एक सांगर एक कलाकार है जो 5 साल लगातार अवार्ड पाया, तो ये जैसन नहीं नहीं नीखंती इन नीखंतक से लेकर फैफन नीखंत लोग 5 साल लगातार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, इसलिए कि एक रोज एक दिन के अंदर बिना इन डाक कुमार सानू ने 28 गीत, जी हाँ दोस्तों 28 गीत गाया और रिकॉर्ड किया बिना इन डाक दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है इसी कारण। मिस्टर सानू एंड साधना सरगम।

कुमार सानू एंड साधना सरगम, आज आप चांदनी हो और तू मेरे साथ हो, उदित नारायण, पद्माश्री उदित नारायण। उदित नारायण ने लगभग 67 तक दर्जन गाना गाया है दोस्तों, और 36 तक भाषा ताल में। आप जानते हैं इंडिया में लगभग 415 ताल है, भाषा है, तो उदित नारायण ने 67 तक 36 भाषा में अपन गीत पेश किया है। और सब गीत में से एक गीत है, ये एक नया सॉन्ग है, एक दो महीना पुरानी है दोस्तों, और गाना के बोले इंडिया से आया हो, उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में।

दोस्तों और उदित नारायण के साथ साथ ये द्वैत आपने सुना। और दोस्तों मित्रा जी, दालिया मित्रा जी ने उदित नारायण के साथ ये द्वैत पेश किया आप सभी के लिए। उदित नारायण ने ही तक में शुरुआत किया गाना गाने के और लगभग 14 ऑन द स्काई देंगे उदित नारायण के मिला। एक नया सॉन्ग और मैं चॉइस करके रखा उदित नारायण का। मैं सोचता हूँ कि ये गीत फिल्मों में अभी नहीं आया या फिल्मों में नहीं आएगा। मिस्टर उदित नारायण या पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे।

आज के लिए माफी, कल तो छोड़ दूंगा, कल जब आएगा तो देखा जाएगा दोस्तों, कल आएगा तो देखा जाएगा। मिस्टर सानू पन्नाश्री, मिस्टर सानू को नहीं उदित नारायण होना चाहिए। माफी किए दोस्तों, आप सभी से माफी चाहता हूँ। उदित नारायण, पन्नाश्री उदित नारायण के आवाज में एक और सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ा वक्त और।

उदित नारायण के बाद में भी आप गीत को सुने। श्रिया घोषाल, श्रिया घोषाल कई तरह के गीत भी गाया है दोस्तों। और श्रिया घोषाल जब 6 साल के था तभी से ये म्यूजिक में, म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और आज तलुक के म्यूजिक की दुनिया में है। शुरुआत किया अपन सॉन्ग से तुई दर्शन तुई में, और कई तरह से इन्हें लोग अजमायर किए, एक गायकी निकलेंगे। फिर भी जाकर सारेगामा पा का प्रोग्राम में इन्हें लोग टेस्ट किया और पता लगा कि ये प्लेबैक सिंगर का काबिल है। तो श्रिया घोषाल और साथ ही साथ शकील फर्नांडस दोनों की आवाज़ में अब एक गीत सुनेंगे।

सिया गोसाल का न्यू सॉन्ग दोस्तों जैकलीन फर्नांडिस के साथ अभी आपने सुना। एक दूसरा गीत और है साध लॉन्जरेट गुली माता। ये एक अरबी मिक्स, इंडियन अरबी मिक्स आप सुनेंगे।

0: I love you.
1: Diafa 2023 Sadlam Jarat performing Guli Mata song. Abhi aap sune the aapi ka happy station Fahon Hindustani Radio aur aap sune program Gito ka Sangam. सोनू निगम, पद्मश्री सोनू निगम और एक बार फिर श्रेया घोषाल, दोनों की मीठी आवाज़ों में कुछ कहा अपने. मूवी का नाम है, सॉन्ग का बोल है, पहले ना देखता था यू मेरा दिल.

सोनू निगम एंड श्रिया घोषाल दोनों के मीठी आवाज में सम आप सुन रहे थे सोनू निगम। दोस्तों सोनू निगम प्रोग्राम आज और कल में लगभग 100 जी हाँ दोस्तों 100 गाना रिकॉर्ड किया है पद्मश्री स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफी का। और वैसे तो सोनू निगम गजल क्लासिक भजन और 13 भाषा में भी अपन गीत पेश किया है। एक बार फिर मिस्टर सोनू निगम या पद्मश्री सोनू निगम के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

मर जाओ या जी लो जरा। दोस्तों आपकी बार सोनू निगम एक बार फिर, लेकिन उसका साथ देंगे अलका याग्निक। बिन अलका के दोस्तों ये गीत संगीत जो है इन दिनों में भी पूरी नहीं होते हैं। और अलका याग्निक एक गायकी है जो 3000 से ज़्यादा सॉन्ग पेश किया है। तो मेरी मोहब्बत का जाने क्या होता है, मेरी मोहब्बत को क्या जाने क्या होता है, सोनू एंड

कौन-कौन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे, ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जब आप चुने तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं। ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी, फिल्म अकेली मत जाइयो निकती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे प्लेटफॉर्म FM पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरी वीराम रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुआ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहे रख प्लेयर में रखे, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: तुम ही ने दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन सेशन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैं तो मुकेश दहा टॉप ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

कुछ रिश्तों को मुलाकातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस याद आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान।

सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी।

आज हम विचार करेंगे शकुन विचार, और आज हम करेंगे कुत्ते के ऊपर शकुन विचार। कुत्ता, गमन समय जोशवन, फर फर दे कान, तुरंत यात्रा टाल दो, अशुभ शकुन पहचान। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गमन यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से फरफर करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो अपनी यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। शकुन यात्रा में कुत्ते को शकुन रतन कहा जाता है। देवराज इंद्र शर्मा के कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए और गिद्ध को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू रिश्वत के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हो गया था, इसलिए इस विश्वासघात का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम भविष्य में मृत प्राणियों का भक्षण करोगे और प्राणियों को तुम्हारा दर्शन अशुभ फलदायक होगा। इसके साथ ही शर्मा को वरदान दिया कि तुम कर्तव्य निष्ठा के कारण समस्त गृहस्थी प्राणियों में सम्मान प्राप्त करोगी।

विद्वानों का मत है कि प्रेत ग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है। श्वेत वर्ग वाला कुत्ता विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, पीत वर्ण वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहलाता है। यदि गमन कर्ता के सम्मुख श्वान सुनने वालों, जैसे हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता आगे से आ गए तो क्या होता है? दाहिने पैर से दाहिना अंग खो जाता है तो उत्तम फल मिलता है। बाएं पैर से दाहिना अंग खो जाए या बाएं पैर से बाएं अंग खो जाए, अशुभ फल मिले। जमाई ले, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, निर्धबी होकर जमीन पर लेट जाए, यात्रा कार्य में विघ्न असफल। जिन वृक्षों पर अंकुर फूल लगे हों, जिनमें दूध निकलता हो, गंदे पानी से भरा मटका, गोबर, खेत, ईंट, मंदिर अन्न के समूह, भंडार, अन्य शोभायुक्त स्थान या वस्तु पर कुत्ता मूत्र त्याग करता दिखे, अनेक प्रकार के लाभ।

सुनने वालों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुत्ता अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखाई दे, अगर वो अपना दाहिने पैर से दाहिना अंग को खुजलाता है तो हमें उत्तम फल प्राप्त मिलता है, और अगर बाएं पैर से दाहिना अंग खुज जाए तो उससे हमें अशुभ फल मिलते हैं। सुनने वालों, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, वो जमाई लेता है यानी उबासी आती है उसको, मल मूत्र का त्याग करता है तो यात्रा कार्य में विघ्न आने वाले हैं, तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। सुनने वालों, और जिन वृक्षों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, दूध निकलता है और पानी से भरा मटका या गोबर या खेत कुछ भी दिखाई दे और वहाँ पर कुत्ता यानी मूत्र त्याग करे तो वो उससे लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों,

आसन, छत्र, छाया, भीड़ या धूल के ढेर पर मूत्र त्याग करे तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, ओखली, मूसल, कांजी से भरे पात्र, सूप पर

सुनने वाले, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई, अगर ये सब कार्य कुत्ता करता दिखाई दे तो उन सब कार्यों में धन प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दूध अथवा जल के पात्र को देखकर आंख मीच ले, बाद में उसी स्थान पर सो जाए, वस्त्र भूषण का लाभ। सोता हुआ गर्दन ऊंची करके देखें, अर्थ हानि असफलता। कीचड़ से सना हुआ मुख में पत्थर अथवा हड्डी लेकर आ जाए, यात्रा में चोरी का भय। मुख में हड्डी लेकर भौंके, मृत्यु समकष्ट। समुख आया कुत्ते की पूंछ कटी, कान कटे। रोगी दुर्बल हो, चिंता हो, भयतुर हो, असफलता की प्राप्ति। जल से बाहर निकलकर अंग हल्लाता हुआ, चोरी का भय।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि दूध अथवा जल के पात्र को देखकर कुत्ता अपनी आंखें बंद कर ले और बाद में उसी स्थान पर सो जाए तो वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता है। सुनने वालों, अगर सोता हुआ कुत्ता गर्दन ऊंची करके देखे तो उसमें असफलता मिलती है। सुनने वालों, अगर कुत्ता कीचड़ से सना हुआ है और मुख में पत्थर अथवा हड्डी को लेकर आए तो यात्रा में चोरी का भय होता है। सुनने वालों, मुख में हड्डी लेकर भौंके तो उस समय असफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों, जल से बाहर निकलकर अंग हिलाता है तो चोरी का भय होता है। सुनने वालों,

घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता बार बार भौंके तो राज्य दंड का भय तथा चोरी का भय। घर में घुसकर खंभे को आलिंगन करे अथवा चूल्हे पर चढ़ जाए तो प्रियजन से मांग। पिछले पैर को अगले से खुजाए सभी कार्यों में सफलता। बहुत देर तक आकाश गोबर मांस विष्ठा को देखता रहे तो सुंदर स्त्री धन का लाभ। अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा किसी प्रियजन का मरण हो। रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले औरतों का गर्भपात बलात्कार की दुर्घटना अग्नि कुंड से जन धन हानि।

सुनने वालों, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें हमें राज्य दंड कि हमें किसी चीज़ के चोरी का भय भी होता है, कोई हमारा चोरी कर लेगा या फिर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। और घर में घुस कर अगर खम्भे को पकड़े या चूल्हे पर चढ़ जाए तो हमारे प्रियजन से मिलन होता है। पिछले पैर को अगले से खुल जाए तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बहुत देर तक आकाश, गोबर या मास्ट को देखता रहे तो सुंदर स्त्री का लाभ होता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा मिलती है और किसी प्रियजन का मरण का समाचार सुनाई देता है। अगर रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले तो औरतों का गर्भपात, बलात्कार की दुर्घटना और अग्निकुंड में जल हानि ये सब प्राप्त होते हैं। सुनने वालों,

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रातः अग्नि कोण में सूर्य को देखकर भौंके, अग्नि या चोरी का भय। दिन के मध्य में भौंके, मृत्यु का भय। सायंकाल में भौंके, लड़ाई झगड़े में रक्तपात। सायंकाल में सूर्य की तरफ मुख करके रोए, महान दुख। किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे, निश्चित रूप से चोरी। घर के द्वार पर सिर रखकर स्त्री को देखे और कू कू करे, स्त्री को रोग। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि जब सूर्य की किरणें सुबह धरती पर पड़ती हैं और कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो अग्नि या चोरी का भय होता है, यानी आग लगने का खतरा या फिर चोरी का डर लगता है सुनने वालों। और दिन के मध्य में भौंके तो मृत्यु का भय, और सायंकाल शाम को भौंके तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा यानी ऐसे सुनने को मिलता है। और शाम रात को भौंके और फिर महान दुख। और किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी का भय, चोरी का डर है। और घर के द्वार पर सिर रखकर किसी स्त्री को देखे और कुकू की आवाज़ करें तो इससे स्त्री को किसी भी रोग का खतरा रहता है सुनने वालों।

घर के भीतर धीरे करके मुख बाहर निकाल कर किसी स्त्री को देखे और ऊंचा स्वर करे, स्त्री के व्यभिचरणी का संकेत। मांस हड्डी भोज्य को राख के ढेर में छुपाए, अग्नि भय परवासी के पीछे आकर रोए, मृत्यु भय की संभावना। परवासी को कुंकू करता हुआ बार बार आलिंगन करे तथा उसकी प्रदक्षिणा करे, अवश्य ही कारगार में जाना पड़ता है। गोबर से लिपे चौक में आकर बोले, अति संपदा प्राप्त। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी के घर की स्त्री को देखकर ऊंचे स्वर में बोले तो स्त्री के व्यभिचरण का संकेत मिलता है। अगर मांस हड्डी भोज्य को देखकर राख के ढेर में छुपाता है तो उससे अग्नि का खतरा रहता है। सुनने वालों, अगर प्रवासी के पीछे रोए, अगर कोई अरे प्रियजन आता है और उसके पीछे पीछे जाए तो मृत्यु की संभावना रहती है। अगर प्रवासी को कुकू करता हुआ बार बार उसके गले मिले और उसकी प्रदक्षिणा करे तो अवश्य ही उसको जेल में जाना पड़ता है। और गोबर से लिपे चौक में आकर बोले तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने गीत सुना। अब गीत के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बता रही थी कि स्वप्न विज्ञान और उसमें कुत्ते के शकुन और अपशकुन। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कुत्ता अगर जगह को खो दे तो महान कष्ट, एक आंख से रोए कल्याण और शुभ, परवासी के आगे मूत्र करके आ जाए कार्य में असफलता, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, गमन करता के सम्मुख आए धन धन्य की प्राप्ति, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए दोनों नेत्रों को नचाए मृत्यु सम कष्ट, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी जगह को खोदता है तो महान कष्ट होता है, अगर कुत्ता एक आंख से रोता है तो कल्याण और शुभ की प्राप्ति होती है, परवासी के आगे मूत्र करके आ जाए तो कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए और निश्चय रूप से उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, गमन कर्ता के सम्मुख आए तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए यानी दोनों कानों को हिलाए और दोनों आँखों को नचाए तो मृत्यु का समय कष्ट होता है। सुनने वालों, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत की संभावना होती है। सुनने वालों,

तो मैं आप सबको बता रही थी कि कुत्ते के बारे में कि अगर कुत्ता हमारे सामने आ जाए या सपने में आ जाए तो उससे क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं सुनने वालों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उदार को बार बार चाटे उसी दिन यमलोक की प्राप्ति। रोगी के सम्मुख अपनी पूँछ तथा अपना हृदय स्थल बार बार चाटे या सूंघे 2 या 3 दिन में उसकी मृत्यु। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता आंगन में आकर सो जाए फल की सिद्धि नहीं होती। किसी रोगी के सम्मुख कानों को फड़फड़ा कर शरीर समेट कर सो जाए रोगी शीघ्र यमलोक को चला जाता है। यदि रोगी के सम्मुख देह को समेट कर दोनों नेत्र बंद करके मुंह फड़फड़ा लंबा श्वास छोड़े यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेता है। किसी घर में जिसमें रोगी हो किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या रस्सी मुख में लेकर प्रवेश करे रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा।

सुनने वालों, इन सब बातों का ये मतलब है कि कुत्ता बार बार अपने को चाटे तो उसी दिन यम लोग की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और रोगी के सम्मुख यदि कुत्ता अपनी पूंछ अपने हृदय से बार बार लगाए, चाटे या सूंघे तो यो दो या तीन दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता घर के आंगन में आकर सो जाए तो फल की प्राप्ति होती है सुनने वालों। किसी रोगी के सम्मुख दोनों कानों को अगर हिलाता है और शरीर को समेट कर सो जाता है तो रोगी सीधे यमलोक को चला जाता है सुनने वालों। यदि रोगी के सम्मुख अपने शरीर को समेट कर और दोनों आँखें बंद करके और लंबा श्वास छोड़ता है तो यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेते हैं सुनने वालों। किसी घर में जिसमें रोगी हो या किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या किसी मुख में लेकर प्रवेश करे तो रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा सुनने वालों।

प्रवासी के सम्मुख फिष्टा या सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर आगे आकर भाग जाए तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, थोड़ी दूर साथ चलकर पीछे लौट जाए, बहुत धन मिलने। प्रवासी के सम्मुख पुष्प लेकर आए, अति विपुल संपदा मिले। यदि वह श्वन काला हो, कार्य नाशक का सूचक। प्रवासी के संग दो बाईं ओर चले, सुंदर स्त्री तथा धन प्राप्ति। यदि दाहिनी ओर चले, चोरी से धन की हानि। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी और को लेकर आ जाए, निश्चित ही चोर धन चुरा ले जाएगा। सुनने वालों,

उसका कुत्ता यात्री के सम्मुख बैठ जाए और सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर, तो इसका मतलब है उत्तम वस्तु की प्राप्ति, कि उससे कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होगी सुनने वालों। और कुत्ता अगर थोड़ी दूर चलकर पीछे वापस लौटाए तो बहुत सारा धन मिलता है सुनने वालों। और अगर कुत्ता फूल लेकर आए, अति विपुल संपदा और बहुत सारे धन प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर सुनने कुत्ता बाईं ओर चले तो सुंदर स्त्री और धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन की हानि, कि हमारा धन कोई चुरा लेगा सुनने वालों। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी को लेकर आगे आ जाए तब भी चोर को धन चुरा लेगा सुनने वालों।

यात्री के समक्ष ताजा हड्डी लेकर आए शुभ, सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए अशुभ, अपने शरीर को बार बार खुजाए कार्य में असफलता, दाई और जोड़ा साथ लेकर चले या आलिंगन करे तो स्त्री या धन की प्राप्ति, दाई ओर से बाई ओर को घुमाता हुआ चला जाए संग्राम में पराजय कार्य का नाश, क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप एवं बंधन मिलता है, कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे राजा धन छीन ले, गमन अथवा प्रवेश समय युद्धरत युद्ध में पराजय, प्रवासी को देखकर क्रोध से घूर घूर करे या भय से भौंके निश्चित रूप से धन हानि।

अगर कुत्ता यात्री के आगे पीछे ताज़ा हड्डी लेकर घूमे सुनने वालों, तो उसका मतलब है कि शुभ प्राप्त होते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। और सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपने शरीर को बार बार खारिज करता है तो कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। दाई ओर जोड़ा साथ लेकर चले और तो स्त्री या धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और कुत्ता दाई ओर से बाई ओर घूमता हुआ चले तो संग्राम में पराजय और कार्य का नाश होता है सुनने वालों। क्रोधित होकर आगे बढ़े, श्राप एवं बंधन मिलता है। कुत्ता अरे क्रोध से गुस्से से आगे दौड़ा आए तो उससे श्राप मिलता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपना कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे तो राजधन सब छीन जाता है सुनने वालों। अगर कुत्ता घर में प्रवेश करे या रात में तो युद्ध में पराजय, तो युद्ध में हानि मिलती है सुनने वालों। और अगर कुत्ता यात्री को देखकर क्रोध से घुर घुर की आवाज़ करे या भौंके तो निश्चित रूप से उससे धन की हानि होती है सुनने वालों। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो गीत अमिताभ बच्चन की फिल्म का था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रवासी के सम्मुख अपनी पीठ को सूंघ कर दांत अथवा नख से वस्त्र खींचे, धन का लाभ। प्रवासी के बाएं अथवा पीठ पीछे कुशब्द करे, युद्ध में पराजय। एक आगे और पीछे भौंके, अनेक दुख। पैरों को सूंघे, शीघ्र यात्रा गमन हो। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए, कार्य सिद्ध। जीभ से पेट को छुपाए, लाभ। विष्टा करे या जमाई ले, चिंता से मुक्त। याद रखें, प्रवासी पुरुष हो तो कुत्ते का दायां अंग और प्रवासी कन्या हो तो कुत्ते के बाएं अंग को चेष्टाएं अनुकूल और शुभ होने वाली होती हैं। इसके विपरीत पर प्रतिकूल फल मिलता है। सुनने वालों, जो अभी मैंने आपको बताया तो इसमें ये था कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता यात्री की पीठ को सूंघे और अपने नखों से वस्त्र खींचे तो धन का लाभ होता है। सुनने वालों, अगर यात्रा पर अगर कोई जा रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे कूर शब्द करे यानी जोर से बोले तो युद्ध में पराजय होती है, और अगर पीछे पीछे भौंके तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। सुनने वालों, अगर पैरों को सूंघे तो शीघ्र यात्रा गमन हो, तो शीघ्र यात्रा पर चले जाना चाहिए। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए तो कार्य सिद्धि, तो कार्य सिद्ध होते हैं। सुनने वालों, जीभ से पेट को छुए तो लाभ मिलता है। सुनने वालों, विष्टा करे या जमाई ले तो चिंता से मुक्त, तो चिंता सारी दूर हो जाती है। सुनने वालों,

फल ले जाते हुए बाई ओर, घर आते दाई ओर मिले उपज अच्छी। जुआरी को जुआ खेलने जाते दाई ओर मिले जुए में अत्यधिक लाभ। उसी को दाई ओर अंगड़ाई लेता, नींद लेता, मल त्याग करता, मिले तो लाभ प्राप्त। किसी गर्भवती के दाई ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे पुत्र लाभ। यदि बाई ओर ऐसा करे पुत्री का जन्म। मूत्र त्याग की बजाय प्रस्तन हो गर्भपात। सुनने वालों, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब स्वपन विज्ञान पुस्तक से निकाली जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, अगर कोई किसान हल ले जा रहा है और कुत्ता उसकी बाई ओर आता दिखाई दे तो उपज अच्छी होगी, यानी कि उसकी फसल अच्छी होती है। सुनने वालों, जुआरी को जुआ खेलने जाते हुए दाई ओर अगर कुत्ता मिल जाए तो जुए में उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, उसी को दाई ओर अंगड़ाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ, मल त्याग करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, और अगर किसी गर्भवती स्त्री की दाई ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे तो पुत्र लाभ, यानी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यदि बाई ओर ऐसा करे तो पुत्री का जन्म होता है। सुनने वालों, और मूत्र त्याग की बजाय प्रसन्न होकृत करे गर्भपात। अगर कुत्ता मूत्र त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो उस स्त्री का गर्भपात हो जाता है। सुनने वालों,

प्रवासी को नौकरी की तलाश हो उसके दाएं और प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वास पात्र नौकर या उदार स्वामी मिले। चुल्लैया ऊंचे स्थान पर दाएं पैसे सिर खुजाए, इच्छित कार्य में सफलता। यदि ऊंचा स्थान मलबे का ढेर हो कार्य सिद्धि। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ सिर उठाकर देखे और कान फड़फड़ाए अशुभ है। मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी उछालते दिखे या हड्डी मुंह में दबाकर घुराते दिखे भयंकर कष्ट। दाएं पैर से दाई आँख खुजाए मित्र आगमन। यदि सर को खुजाए अत्यंत प्रियजन का आगमन। गर्मी में छांव में बैठक घुराता है मित्रों से लड़ाई। प्रवासी को नौकरी की तलाश और दाएं प्रसन्नतापूर्वक निष्ठा करें, विश्वास पात्र नौकर या उदार स्वामी मिलता है सुनने वालों। अगर ऊंचे स्थान पर कुत्ता बैठा है और अपने सिर को खुजाता है तो इच्छित कार्य में सफलता मिलती है सुनने वालों। यदि ऊंचे स्थान पर मलबे के ढेर पर बैठा है तो कार्य की सिद्धि होती है सुनने वालों। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी को उछालता है या मुंह में हड्डी दबाकर कुत्ता घुराता है तो उससे भयंकर कष्ट प्राप्त होता है सुनने वालों। दाएं पैर से दाई आँख को खुजाए तो मित्र का मिलन होता है सुनने वालों। यदि सर को खुजाए तो प्रियजन का आगमन।

सुनने वालों, जो आज मैंने आप सबको बताया कुत्ते के शगुन अपशगुन के बारे में, ये पुस्तक स्वप्न विज्ञान से लिया गया और इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश गौतम जी।

बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। सुनने वालों, मैंने आप सबको जो आज का कुत्ते के बारे में बताया, तो आशा रखती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

शुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए

0: आपकी करम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। मेरे आवाज़ के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी के प्यार भरे राम राम प्रणाम आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारे राजेंद्र जी के ओर।
1: भावन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि सूपनखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। बहुत ही रोचक विषय है। और इसके बाद विषय आता है कि हिंदू कौन है, कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सूपनखा कैसे कौन सा पुण्य किया था उसने कि दूसरी लाइफ में श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। तो इसी को सबको सुनने के लिए सब श्रोताओं को मेरा आज तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार रहेगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या कहे राजेंद्र जी, क्यों ना पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए वही गीत चला देते हैं जो हरिओम शरण जी हम सब के लिए गा करके छोड़ गए हैं, जो मन से उदास बैठे हुए हैं उन सभी को।
1: जो मन से उदास बैठे हैं उनकी उदासी तो दूर होनी ही चाहिए।
2: जरूर जरूर।
1: और हरिओम शरण जी ने ऐसा एक भजन बनाया है कि सबकी उदासी तकरीबन दूर हो ही जाती है, क्यों ना वो गाना हम पहले सुने और उसके बाद आगे बढ़ें।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों आज हम सबका जो हमारे विषय है कि
1: हाँ, आज का जो संदेश है हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि संदेश सूपनखा का संदेश है।
0: तो ये बताओ, ये कौन सूपनखा है जो जिसका त्रेता में नाक काट दिया गया था?
1: हाँ, रावण की बहन सूपनखा है। त्रेता में लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस कराई भगवान राम को। चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए भगवान राम से। उन्होंने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो यति हूँ, मेरी तो हो नहीं सकती है। तो फिर भगवान राम के पास भेजा, तो फिर उन्होंने उनके पास भेजा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया और नाक कान ही काट दिया कि जा तब कहीं शादी करने लायक न रहे।
2: इसका और गहराई है, पर अब राजेंद्र इतना कह दिए तो इस पे धरो।
0: नहीं, क्योंकि ये बात है, ये एक हम लोग सूरीनाम में होते थे ना, तो रामलीला होते थे, रामलीला राजेंद्र जी
1: जी,
0: तो रामलीला होते थे, तो जिस दिन सूपनखा का नाक कटता था ना, काटी जा, वो दिन तो खास दिन होते थे,
1: काफी
0: हाँ बड़ा भीड़ भाड़ होता था। आश्चर्य की बात है कि बड़ा शायद उस समय पे कथा हम समझे नहीं होंगे,
2: पर आपने पूछा तो मैं बता दूं। क्योंकि सीता जी है भक्ति और लक्ष्मण जी को कहते वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं पा सकते।
0: वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं हो सकता।
2: इसलिए जैसे सूपनखा तुरंत भगवान के ऊपर पास गए और भक्ति और वैराग्य को छोड़ दी, इसलिए उसका उसके साथ ये हाल हुआ।
0: तो दोस्तों ये समझ लेना कि कहीं आप ये दोनों को आप पार करके भगवान के पास पहुंचने का इच्छा कर रहे हो, तो जानने रहना कि क्या होने वाला है। राजेंद्र जी आगे संदेश की ओर बढ़िए, क्योंकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहा है। पर ऐसा क्यों ना, पहले हम क्यों ना एक उसी अंतर्गत में एक गीत को जो आपने इतना मेहनत से खोज करके रखे, पहले गीत को सुन लेते तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
1: जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: वो मेरी पत्नी है सीता, वो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण।
1: हाय हाय, निम्बू लगता है वो। मरी मरी मरी मरी मरी।

0: मन मंदिर में। मन और मंदिर की जब बात चलती है तो सारे काम सरल से ही हो जाते हैं। बात चल रही थी सुनने वालों सूपनखा की। सूपनखा रावण की बहन और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सूपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भागिनी सूपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हों कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सूपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी सत्री जिसने नककटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त न कर पाते, लेकिन सूपनखा का ये आशीर्वाद मिला। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, कैसे मिला?
1: अब ये पूछना है, ये वृतांत तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब जैसे आप कह रहे हैं कि संत मुनि ऋषियों जो कितना कठोर तपस्या करते हैं और तभी जाकर के प्रभु परमात्मा से कि उनको प्राप्ति करता है, और ये तो बनमासी किए थे, नाक कट गया था, कान कट गया था, फिर भी प्रभु का प्राप्ति कर लिए, तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ राजेंद्र जी।

0: मन बेचैन है और सुनने का इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को एक बार से फिर अभिनंदन करते हुए और ये जरूर कहना चाहूँगा कि संदेश जो है तो बड़ा ज़बरदस्त है और हम सब अभी उसके बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो शांता जी, इसमें क्या ये इस बात को आप थोड़ा से भी जानते थे कि ये वृतांत जो त्रेता में हुआ और द्वापर में कैसा मिलन, इसके बारे में?
1: नहीं, ये त्रेता में जो हुआ, ये जो राम संग राम की कथा में, रामायण में, तो उनका कथा तो मैं बार बार सुनी, पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के वधु बनी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
2: तो अब सुनिए आगे कैसे बनी।
1: वही तो हम बेचैन है, हमारे साथ श्रोताओं भी बेचैन है सुनने के लिए।
2: भगवान श्री राम का सानिध्य मिला, कैसे मिला? सूपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आदया शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। दरअसल इस सब का मर्म सूपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सूपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी, इंद्रलोक की जी।
1: तो इसको शायद कुछ शाप मिला होगा तब ये धरती पर आ गए।
2: हाँ, वही हम आगे बताने जा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था उस समय। या नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गई, तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। वज्रा ऋषि के क्रोध का बनी भोजन। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि ये राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और सूपनखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी, उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार मई भी सूपनखा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सूपनखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो श्री प्रभु को प्राप्त कर सकती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा।
0: ये अभी जैसे शांता जी ने कह रहे थे हम सब के साथ ना राजेंद्र जी,
2: जी
0: वैराग्य और भक्ति,
2: हाँ
0: इसी अंतर्गत में तो शांता जी तो काफी जानकारी है आपके।
2: हाँ, तो शांता जी तो सब चीज का जानकारी रखती है,
0: अपना
1: है।
0: पिटारा में लेकर
2: अपना पिटारा में लेके घूमती हैं, तो वो तो सब रखती है।
1: इसलिए कहता है सत्संग करो भाइयो,
0: सत्संग में। और ऐसे हम लोग के सत्संग वो ज्ञान सरोवर होता है जिसमें हम डुबकियां लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलते आते हैं। जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो दोस्तों, हम और आगे ये वृतांत को सुनने वाले, पर सुनने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए और चला दे।
2: जरूर जरूर।

0: कि गीत में तो राजेंद्र जी ने पूरा कथा रख दिया, और कथा हम लोग यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, ताकि हम सब के लिए एक सुंदर सा गीत खोज के रखते हैं। और कहावत ये है भी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर और हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा और भाग्य लिखता है। तो हम सब आज के कार्यक्रम में जो राजेंद्र जी हम सब के लिए सुपनेखा का और वृतांत हम सब के लिए खोज करके लेकर आए हैं, और हमारे लिए एक गीत का तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, इसका लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप हमारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं?
1: गीत बहुत ही रोचक है, बोले राम से सूपनखा मुस्कुराई के कजरी है, अंजू उपाध्याय जी ने गाई है और अमृत अवधि परंपरा की है, बहुत ही अच्छी है, सुनते हैं इसको।

0: मुस्कुराई से बनुआ में आए के ना, बहुत ही अच्छी कजरी जो संजय जी की पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं सूर्पनखा के बारे में। सूर्पनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन बैराणी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवतापराध पर बैठी कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशैव दुष्कृतम के लिए उनकी सहिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
1: ये पुष्कर कहाँ है राजेंद्र जी? भारत में
0: पुष्कर
1: एक स्थान को भी कहते हैं पुष्कर तो?
0: हाँ, जयपुर के आगे एक अजमेर, अजमेर से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर पुष्कर है,
1: पुष्कर वहाँ कहते हैं।
0: हाँ, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है,
1: एक ही दुनिया पे एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा जी का। हाँ, पुष्कर में
0: जी। तो करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वही 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। कुबजा, कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सूर्पनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी।
1: सहचर्या मतलब?
0: सहचर्या मतलब पत्नी।
1: पत्नी
0: सहचर्या मतलब जो जैसे भगवान है तो उनके साथ साथ आगे का जो वृतांत है उसके साथ देना।
1: हाँ,
0: सहचर्या
1: उसको कहते हैं। सहचर्या
0: उसको सहचर्या कहते हैं।
1: ओ, ये बात हुआ
0: जी।
2: और 10,000 बरस तक ये
0: 10,000 बरस तक उनको तपस्या करना पड़ा तब ये मिला। और हम लोग साल भर एक दो साल एक कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे रूठे हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना
0: तो ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। आप देख लो कि कई लोगों ने तो पूरा लाइफ और कई युग भी तपस्या करी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। और कलयुग में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम नाम ही भगवान का लेने से जल्दी सुमिर सुमिर करके उद्धार हो जाता है।
2: इतनी आसानी से
0: कलयुग में ये सुविधा है कि क्योंकि लाइफ उम्र कम है, 120 वर्ष तक की उम्र है, वो उसी में सब कुछ करना है तो इसलिए उसमें शॉर्टकट दिया है।
1: वो तो जल्दी हो जाता है,
0: जल्दी हो जाता है।
1: तो ये तो बढ़िया हुआ, तो बढ़िया समय पे हम लोग का जन्म भी हुआ।
0: हाँ, एकदम अच्छे समय पे हुआ और ये समय सदुपयोग है। न चाहिए कि बोलना कि अच्छा नहीं है कलयुग, कलयुग बहुत अच्छा भी है।
1: जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि सूर्पनखा, ये वृतांत मैं आज पहला बार सुना हूँ जो कि द्वापर और त्रेता का वृतांत। और इसे सुन करके हमें अच्छा लग रहा है कि भाई राजेंद्र जी इतना सुंदर संदेश हम सब के लिए रखे। पर राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: आगे का वृतांत तो सूर्पनखा का एकदम समझ ही गए सब लोग और आगे की वृतांत सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ही वृतांत बहुत है।
1: इतना ही बहुत है।
0: हाँ, आगे का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, क्या बनेगा फिर देखते हैं क्या बनना।
1: चलो सुन लेते हैं कि हमें क्या बनना है।
0: जी जरूर।

जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अर

0: लाशों के कफन बेचने वाले,
1: ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले।
0: तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
2: इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे, तो कैसा इंसान बनना आपको?

0: अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे।
1: इस बात पर ये भी कहना चाहती हूँ, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
0: तो सुना दो आगे।
1: अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाए।
0: शांता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए दोस्तों।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है। और यह है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिसमें हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार से और भी प्रकाश आ सके। तो हमारी खोजी सेना जो है, हम सब के लिए विषय रख देते हैं। और जैसे कि अभी आपने राजेंद्र जी के मुखान से सुने कि त्रेता का वृतांत और द्वापर का वृतांत, जो जा कर के हम शायद कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, तो आज इस बात को हमें भी सुनने को अवसर मिला।

दोस्तों, कहा जाता है कि समय की कीमत, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि अखबार जिसे हम क्रांत से जानते हैं ना, तो अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम के चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौका कम अफसोस ज़्यादा देते हैं। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: विशेष हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यंती इति हिंदू से हुई थी, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत के इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो पाएंगे हीन प्लस दू बराबर हीन भावना से दूर, यानी जो हीन भावना से, हीन भावना समझिला संजय जी?
1: ना ना समझिल, बोले तो
0: खराब भावना,
1: खराब भाव,
0: हीन मतलब पीछे,
1: हीन
0: भाव, खराब भाव, भावना, भावना जो रहे
1: हिंसक के हीन है वो।
0: हाँ, हिंसक के हीन रहे,
2: जो खराब काम कर,
0: हाँ
1: वो ना ठीक है,
0: ना ठीक है,
2: ना ठीक काम करे। हाँ।
0: अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है।
2: खराब काम से जो दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, चोरी चपाटी से दूर रहे।
0: हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेद से उत्पत्ति है। जानिए कहाँ से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: अगर आप कहते कि लोग ऐसे कहें कि क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में शायद लिखे होंगे कोई कुछ लोग कि सिंधु पर, सिंधु है क्या है?
0: सिंधु घाटी की सभ्यता है। एक आपने इतिहास में देखा होगा कि सिंधु एक घाटी है, उसकी पूरी एक सभ्यता है। तो इतिहास में वो बहुत सारा उसका देखने को मिलता है।
1: हाँ।
0: वो एक प्रोग्राम बन सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। आप चाहेंगे तो अगली बार वो प्रोग्राम हम धरेंगे यहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता।
1: काफी जानकारी उस पे,
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो अच्छा, उसके बारे में एक बार जरूर बात करेंगे। हाँ। पर आज हो रहा है हिंदू का बात,
0: जी
1: सिंधु का नहीं, हिंदू,
0: हिंदू का।
1: शांता जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
2: हाँ, तो क्योंकि मुझे आज पता चला भी बहुत सारे चीजें, तो मुझे बहुत गर्व है।
1: सही बात, सब गर्व के बात। ये कार्यक्रम ही ज्योति का प्रकाश ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग के विशेषज्ञ जो हमारे विषय रखते हैं
2: अलग अलग से विषय,
1: अलग
2: हर सप्ताह कुछ अलग से हम लाते हैं, इस पे हमारी भी उन्नति होती है।
1: जरूर जरूर, हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाता है ना।
2: एकदम।
1: तो राजेंद्र जी सुना दो आगे।
0: हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है। ऋग्वेद के ब्रह्मस्पति आगम्य, ऋग्वेद से बृहस्पति आगम्य में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है।
1: उल्लेख के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: उल्लेख मतलब देखना, जैसे ये इस किताब में हमने ढूंढा और वो लिखा हुआ मिला, उल्लेख, लेख को
1: लिख, जो लिखा हुआ है,
0: जो लिखा हुआ
1: जिसमें
0: है
1: मिल सकते हैं,
0: उसमें मिल सके। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के बृहस्पति आगम्य में मिलता है उल्लेख। हिमालयम सभारंभ्य यावतम इंदु सरोवरा तम देव निर्मतम देशा हिंदुस्तानम प्रचच्छते। इस प्रकार मिलता है लिखा हुआ ऋग्वेद में, अर्थात हिंदू से, हिमालय से इंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं।
2: अच्छा।
0: केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हीनम चा दुस्ततेवा हिंदू रिच्चतुच्चते प्रभे, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में दोहराया गया है। हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। क्यों ना हम एक आप कुछ पूछना चाहें या गाने की तरफ बने?
1: नहीं, इच्छा है कुछ इसी अंतर्गत में जो गीत होगा कुछ, पता नहीं शांता जी पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं।
0: हाँ, पिटारा में जो शांता जी ने छोड़ ही रखा है, हम उसको सुनते हैं।

0: घूमे घूमे घूमे घूंगर, पद्मावती फिल्म का बहुत ही अच्छा जो गाना अभी आपने सुना है।
1: ये फिल्म आपने देखी कि
0: नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा ये फिल्म, शांता जी ने देखा। शांता जी इसका कुछ वृतांत बता सकती है, लेकिन इस फिल्म पे बहुत हंगामा हुआ।
1: हाँ, मैंने भी इस फिल्म के बारे में काफी हंगामा हुआ था भारत में।
0: जितना हंगामा हुआ उतना ये फिल्म सुपरहिट हो गई।
1: अच्छा, शांता जी आपने देखा ये फिल्म?
2: फिल्म हमने देखा यहाँ शहर में, बहुत जैसे राजेंद्र जी कहा एक सुपर हिट फिल्म है। और अगर इस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको जैसे सांस बंद कर कर देखना पड़ेगा।
1: अच्छा, इतना गंभीरता फिल्म है।
2: हाँ।
1: ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र जी, क्योंकि आप जो वृतांत सुना रहे हम सबके हिंदुत्व के बारे में, उसमें क्या और संदेश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी ने फिर एक अच्छा संदेश भेजा है।
0: क्यों ना वो संदेश पहले
1: सुना दूं मैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि संदेश तो आते रहते हैं और यहाँ संदेश की खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियाँ महक जाती है। ऐसा ये वृतांत क्यों है? क्योंकि इस पे जब ध्यान दिया जाए कि हम सब कहीं सत्संग और पे जाते हैं ना
2: जी।
1: कहाँ जाते हैं आप सत्संग पे शांता जी?
2: नाम लेना अलाउड तो मेरे
1: नहीं, अलाउड नहीं, पर जाते मंदिर और ब्यूर्थ है और उसमें नाम तो नहीं लिया मैंने और बस बोल दिया।
2: हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। अरे हमारे विज्ञानों लोग भी ये मंच पे बैठ के और कथा कहते हैं, तो उसमें से भी आप बहुत सारे चीजें ग्रहण कर सकते हैं।
1: जरूर, तो सत्संग में जाना, पर सत्संग में जाना जैसे कि ये वृतांत सुनाया गया कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। और चंदन क्या है? चंदन एक ऐसा वस्तु है जिसे आपको और सिर से माथे से लगाते हैं लोग। कहीं जाओ और चंदन लग के और आप बाहर निकलो तो लोग जान जाएंगे कि ये कहीं सत्संग से आ रहे हैं।
2: और वो ठंडक पहुंचाता है।
1: ठंडक भी पहुंचाते, पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उंगलियां महक जाते।
2: हाँ।
1: और आजकल क्या हुआ राजेंद्र जी, हॉलैंड में ऐसा हो गया है।
0: कैसा?
1: कि हम लोग सलाई के टिक्की में रुई लपेटता है और रुई से और लगा करके चंदन सबके की तो और वाचे से लगाने लगे। तो ये बात है कि कौन उंगली से किसके चंदन लगाना, इसमें भी संदेश होता है। उसी कारण ये वृतांत को लोग लिखे हैं कि वैसे चंदन को चाहिए उंगली से लगाने को। लोग वतस्ताफ से और यानी सलाई के टिकिया में लपेट करके और रुई उसी से चंदन लगाते रहते हैं, पर असलियत में चंदन का महत्व लगाने में कुछ और है। इस पे हम सबको जरूर थोड़ा से ध्यान देना है।
2: आपने कहा उंगली से, तो कौन से अंगुली?
1: एक अनामिका से और लगाया जाता है और एक अंगूठा से लगाया जाता है। ये तो मैं बस जानता हूँ कुछ छोटा से, बाद में हम ने मास्टर जी जो हमारे पैनल के पीछे है उससे पूछेंगे। अगर जब हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे और बातों बातों में बस यही रुक जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में जो आज हमारे विशेषज्ञों ने,
2: पर अभी ने आपने छेड़ा ना कि चंदन लगाना ये तर्जनी।
1: हाँ।
2: और अंगूठा था, अंगूठा से पुरुष को लगाता लगाया जाता
0: है? तर्जनी ये रहे।
2: अच्छा, तर्जनी
0: इससे नहीं।
1: हाँ, तो राजेंद्र जी ने दिखा दिया कि तर्जनी। हाँ,
0: रिंग
1: फिंगर को कहते हैं अनामिका।
2: अनामिका।
0: हाँ,
1: हाँ, और अंगूठा।
2: और अंगूठा।
1: हाँ, और सभी सुनने वाले ने देख नहीं पाए यहाँ से,
2: इसलिए
1: तर्जनी कहते हैं वैज फिंगर।
2: वैज फिंगर।
0: हाँ।
1: तो राजेंद्र जी, शांता जी को तो ये है कि बस अब बता ही दीजिए, पर अभी अगोल लेते हैं शांता जी।
2: अच्छा,
1: बाद में देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कुछ और।
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: परिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिंद

विधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय भी इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, वो हम सुनाएंगे इस गाने के बाद। तो बढ़ते हैं, क्यों ना एक गाना सुनेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।